0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

0: मगर आलम बखार वाला क्या रोग आला डॉक्टर भ्याला
1: रोगी मात्र रही ना मगला उठता ही ना।

0: क्या है बाबूजी?
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है अगर ये गाना ना गाए

0: तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर हो।

0: नमस्कार नाशिककर, मी सुनील बर्वे बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: हा तो बांगडूओ शुरू हो जाओ और सुर लगाओ. गधो सुर में रेको, सुर में भटको मत, भटको मत. जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए,
2: लोगे तुम बलाए.
1: अरे नालायक हो हम नहीं तुम,
2: अरे नालायक हो हम नहीं तुम.
1: तुम लेके बलाए फिर देंगे,
3: फिर देंगे.
1: अरे देंगे दुआए,
2: देंगे दुआए.
1: शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी. क्या

0: है तुझको अगर दुनिया का डर छुप जा मेरी आंखों में,
1: तुझको अगर दुनिया का डर छुप जा मेरी आंखों में।

है तुझको अगर दुनिया का डर, तू क्या मेरी आंखों में है तुझको अगर दुनिया का डर।

एक नजर ने तेरी मार दिया, एक अदा ने तेरी लूट लिया, किस खता का बदला लिया ये बता न सता।

मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा।

सम्मान भी जाओ। चाहे मुझे बुरा समझो चाहे मुझे अच्छा समझो, मैंने सब कुछ तुम्हारा प्यार जीतने के लिए किया। ये ना किसी गरीब का प्यार है ना किसी अमीर का प्यार है, एक इंसान का प्यार है जिसने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया।